0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: Hello, Acharya listeners. Myself, Manjusha Katigar, Assistant Professor, Coordinator of BBI from NJ Acharya and DK Marathe College. Welcome on Acharya 90 FM on our special program of Union Budget 2026-27. Today, we have an expert resource person with us from Acharya College only. He is a CA and Assistant Professor. Professor Mahesh Vaishya giving us a briefing about our budget, and he tells us how the Indian economy budget, how our budget is affecting our Indian economy, business and common person. So sir, tell me first of all, in simple language, what do you mean by budget?
1: Let me before start, I just want to ask a question. Madam, should we continue in English or it's okay if we go in Hindi as well as English?
0: No, we can use both the language.
1: Okay, thank you.
0: Combination of
1: India. जो हमारे श्रोता है, listeners है, मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही simplified way में हमारे budget को understand करें. And before going ahead with the budget, I just want to tell you कि budget आज के हमारे जो generations हैं, young generations हैं, वो बजट को इतना सीरियस कंसिडर नहीं करते हैं. वो सोचते जैसे बाकी भाषण होते हैं पार्लियामेंट हाउस में, एंड बाकी जैसे सरकार अपनी काम करती है, वैसे एक बजट का भी एक होता है सिनेरियो. तो मैं सभी अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बजट को उस नजरिए से ना देखें आप. बजट एक अलग पहलू है. जैसे हमारे घर में हमारे गार्जियंस, माता पिता, फैमिली अर्नर्स जो होते हैं, वो हर महीने का एक इनकम लाते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे घर के जो दूसरे गार्जियंस होते हैं वो उसका एक एक्सपेंस का रेशियो बनाते हैं कि इस महीने में हमको मेडिकल का ये खर्चा है, इस महीने में हमें टूर के लिए यहां जाना है तो उससे ये रिलेटेड खर्चे हैं, इस महीने में हमें बच्चों का फीस बनना है उससे ये खर्चे हैं. तो हम एक अपना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि भाई हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं. जब भी किसी व्यक्ति के आमदनी से ज्यादा खर्च होंगे तो यहां पे एक बात खुलकर आती है कि आपको कहीं ना कहीं से वो एडिशनल इनकम को जनरेट करना होगा या फिर किसी से वो एडिशनल इनकम लेना होगा मांगकर. तो आप या तो बैंक के पास जाएंगे या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे या किसी करीबी के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप मदद करिए. और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आप वहां सरप्लस होंगे, और जब आप सरप्लस में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को किसी और अच्छी जगहों पर निवेश करेंगे. लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लोग गहने बनवाते हैं, या लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, या लोग भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे हम अपने घर में एक सिनेरियो रूपांतरित करते हैं कि हमारा इनकम का फ्लो क्या है और एक्सपेंस का फ्लो क्या है, सेम वही फ्लो को हम एक अपने पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे नेशन के लिए हम जब बनाते हैं तो उसको हम एक बजट का रूपांतर देते हैं. तो ये बेसिक ओवरऑल जनरल सिनेरियो है बजटिंग का.
0: एज अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल का जो बजट हमारा है 26-27 का, उसका मेन तत्वज्ञ, उसके पीछे मेन तत्वज्ञान क्या है, जो बजट बना है उसके पीछे क्या मेन एम है?
1: आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैम. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा इसके बारे में कि देखिए, आज के जो जनरेशन है या अभी के जो सिनेरियो चल रही है, तो लोगों का ये सोच है कि भाई पब्लिक को क्या मिल रहा है.

0: बजट से पब्लिक को आमदनी क्या हो रही है, पब्लिक को क्या इनकम्स आ रहे हैं, या बजट से क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप उस सिनेरियो में ना देखें। बजट बेसिकली एक रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस से होता है। तो जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली सरकार ये देखती है कि आपके खर्चे जो मंथली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, वो इनकम इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो, वो रेवेन्यू बेसिस होगा। बट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम करें तो सरकार लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है, जहां पे 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स डाउन द लाइन, यहां से हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक भविष्य निवेश की तरफ चलते हैं। तो दोनों ही सेक्टर को पैरेलली गवर्नमेंट लेकर चलती है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पिछले साल का जो बजट आया था वो काफी इंटरेस्टिंग बजट था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में काफी बड़ा स्लैब रेट में राहत दिया लोगों को। 12 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी पिछले ही साल 2025 सितंबर मंथ में गवर्नमेंट ने जीएसटी में काफी रेट्स कट डाउन किए, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेक्टर में ऑलरेडी काम कर दिया है। तो रेवेन्यू में उन्होंने इनकम के ऊपर भी आपका जोर दे दिया कि भाई आपके इनकम को हमने बढ़ा दिया, तो अब आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई मैं 5 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा, मैं 8 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा। तो अब आपको 12 लाख तक की लिमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो आपको वहां पे चिंता खत्म हो गई। मेजोरिटी हमारी जो 60 से 65% जनता है जिसकी आमदनी 10 से 12 लाख के बीच में है या बिलो है, उन सभी जनताओं के लिए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। प्लस बाकी हमारी जो बचे हुए लोग थे, या मैं कहूं 100% लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ में जो जीएसटी के रेट्स कट डाउन किए, इससे कंजम्पशन में काफी ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब रेट कम हुए हैं तो प्राइसेस नीचे आए हैं, कीमतें कम हुई हैं, कंजम्पशन बढ़ा है। तो रेवेन्यू पे ऑलरेडी सरकार ने फोकस किया था। इस बार का बजट पे सरकार की ये एम है कि कैपिटल पे फोकस किया जाए, और इसलिए आप देखेंगे इस बार का बजट नेशन पे किया गया है, ना कि लोगों पर। तो ये नेशन जो बजट है, ये नेशन बजट ऐसा है कि हमने यहां से 10 से 15 20 साल का निवेश का स्तर रखा है, जहां पे हम बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इंफ्रा कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं, डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम काफी बड़े पैमाने में बड़े विजन के साथ हम ग्लोबलाइजेशन पे उतर रहे हैं कि हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर नेशन के रूप में अगले 15 से 20 साल में हम आ सके, उस तरह से हमारा फोकस है।
1: आपने अभी अभी कहा, उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि इस साल का बजट जो है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर द नेशन। तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अगर नेशन का बजट है तो हमारा आज का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें 4-5 सालों से, कि इंडिया इज अचीविंग द एक्सीलेंट ग्रोथ रेट। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो राइजिंग पाथ पे दिख रहा है। आई एम द इकोनॉमिक्स टीचर, सो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट अगर राइजिंग पाथ पे चल रहा है तो उसको सस्टेन करने के लिए बजट ने क्या किया।
0: जी, उसे सस्टेन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा। आज अगर हम सोचेंगे कि हम इस साल के इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोगों को खुश कर दें कि भाई चलो इस साल और हमने आपकी आमदनी बढ़ा दी है, इस साल और हमने आपको पैसे हाथ में दे दिए खर्च करने के लिए, रेट और कम कर दिए, तो इससे होगा क्या कि आप थोड़ा उस पाथ पे चलेंगे कि बस आपको कमाना है, खाना है और खर्च कर देना है, बजाय कि हम ये चाहते हैं कि सस्टेन हो। सस्टेन का मतलब हुआ कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें एक आगे विजन लेकर चलना है, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी एक विजन है कि हमको बाय 2047 हमारे भारत को एक विकसित और डेवलप्ड नेशन के नाम से हमारा भारत जाना जाए, जो कि अभी भी हम उस मार्ग पे हैं कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चल रहे हैं, और काफी सालों से हमारा विजन है कि हम कब डेवलप होंगे। हमारा जो जनरेशन है, हमने पढ़ाई के दौरान भी यही पढ़ा कि हम लोग डेवलपिंग नेशन है, और आज भी हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी हम यही पढ़ रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है। तो कब वो सपना हमारा साकार होगा कि हम भी एक डेवलप नेशन बने, तो उसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी है उससे रिलेटेड इस बार के बजट में काफी कुछ सरकार ने किया है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर देता जाऊंगा।
1: ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहा है हमारा बजट जो है, ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहा है ऐसा।
0: बाकी अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं अगर आप देखेंगे तो उनके ग्रोथ कंपैरेटिवली उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, कहीं तो नेगेटिव में भी हैं, कहीं पे ग्रोथ है बट बहुत बहुत माइन्यूट ग्रोथ है। बट इंडिया इज यस कंपैरेटिवली ग्रोइंग वेरी वेल एंड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड अवर इंडिया इज डूइंग परफॉर्मिंग वेरी वेल।
1: यस, तो ग्रोथ रेट तो सस्टेन हो रहा है ऐसे आप बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट सस्टेन करने के लिए बजट ने इस बार बहुत कुछ किया हुआ है। तो ग्रोथ रेट की बात अगर आती है तो युवा वहां पे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: बिकॉज ग्रोथ रेट युवाओं के ही कंधे पे चल रहा
0: जी,
1: है
0: जी, आज के भविष्य
1: तो,
0: है वो।
1: हाँ, तो मुझे जानना है इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया है।
0: देखिए मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप युवाओं के सेक्टर के लिए बात करें तो आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या एक उनके सामने प्रश्न है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का क्या। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज गवर्नमेंट काफी बड़ा निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग विथ साउथ साइड में, दे आर स्टार्टिंग विथ कॉरिडोर जहां पे वो मिनरल्स जो हमारे ऐसे मिनरल्स है जो अभी तक इंडिया ने प्रॉपर एक्सप्लोर तो किया है बट प्रॉपर अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। हमारे पास मिनरल्स हैं काफी मात्रा में है बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, हम उसको जन धन तक पहुंचा नहीं पा रहे जिसके कारण से वो मिनरल्स हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाकी नेशंस यूज कर रहे हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट इस बार कॉरिडोर पे फोकस करके उन रिसोर्सेस का यूज करेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट एक बढ़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे काम कर रही है, इंफ्रा पे काम कर रही है जहां पे और भी विस्तार रूप से रोड है, रेल लाइन है बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जाहिर सी बात है। उसके अलावा डेटा सेंटर्स रिलेटेड गवर्नमेंट इस बार प्लान की है कि हमें जैसे आज हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या और भी बहुत सारे जो एप्स यूज करते हैं, ये सारे एप्स के जो डेटा सेंटर है दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड इंडिया। और उस वजह से हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि अगर कल को ये कंपनीज किसी कारण से, जैसे कि आपने अभी सुना होगा बीच में कि अमेरिका ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया, किसी और कंट्री ने कुछ और कर दिया, तो हमारे ग्रोथ पे उसका असर आ जाता है। तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपने यहां पे डेटा सेंटर्स कंपनीज ओपन करें और जो डेटा आज बाहर मैनेज किए जा रहे, बाहर के सर्वर में रखे जा रहे, बाहर गांव के सर्वर में वो स्टोर किए जा रहे, वो सारा स्टोरेज हमारे इंडिया में, तो वहां पे आपका जॉब बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंडिया स्टार्ट कर रही है, तो प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहे हैं। ये सारे सेक्टर्स जो बढ़ेंगे इसमें आने वाले भविष्य में आप पकड़ के चलिए कि यहां से करीब करीब 20 से 25 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट हो रहे हैं।
1: ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट ने ये दिया है ग्रोथ के, यूथ के ग्रोथ के लिए। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस, रिफॉर्म, जिसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रिफॉर्म कहते हैं,
0: जी जी जी,
1: कि कुछ ना कुछ हमेशा गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है, तो इस बार कितने रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इस बजट में लॉन्च किए हुए हैं और क्या है वो?
0: देखिये जो मौजूदा सरकार है अगर आप देखें या इसके पिछले की भी जितनी सरकारें गई हैं, अगर आप इनका टोटल समावेश करें, टोटल एग्रीगेट करें तो करीब करीब 350 के आसपास हमने रिफॉर्म्स किए हैं अब तक। और ये कई सारे रिफॉर्म्स है, आप इसमें बैंकिंग रिफॉर्म करिए, आप इसमें टैक्सेशन में रिफॉर्म लीजिए, आप इसमें रेवेन्यू रिफॉर्म करिए, हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जिनको हमने एबॉलिश किया या उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया हमने, लोगों के लिए जीएसटी में जो सिंप्लीफिकेशन लाए हैं या हमने इनकम टैक्स में जो करेक्शंस किए, ये सारे रिफॉर्म्स हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और ये रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, समय की मांग है। जब लॉ लिखा गया था उस समय जो दौर था वो दौर और आज के दौर में बहुत करेक्शंस हैं। अगर आज भी आप कहेंगे कि भाई आप पेपर एंड पेन से लेकर कोई हिसाब किताब करें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज। बट एक दौर था कि जब पेपर पेन से ही लोग हिसाब किताब करते थे और जर्नल बुक्स लिखते थे, बट आज तो हर चीज के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि चलिए मैं एक छोटे से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आज मल्टीनेशनल सेक्टर में रियल टाइम पे आपको डेटा एंट्री होना है, रियल टाइम पे सारा काम, तो हर चीज के लिए रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब तक रिफॉर्म नहीं होगा हम चेंजेस नहीं देख पाएंगे, और चेंजेस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है जी।
1: अभी मैं एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी देश के विकास के हिसाब से ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के साथ साथ आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एमएसएमई के लिए, क्योंकि इस मतलब रिसेंटली एमएसएमई का भी नाम बहुत आ रहा है कि हमें अगर ग्रोथ करना है तो वी हैव टू बुश अवर एमएसएमई, और गवर्नमेंट हर बजट में एमएसएमई को कुछ ना कुछ तो दे रही है, तो आप थोड़ा फोकस कर
0: एमएसएमई से। मैं आपको बताऊंगा, एमएसएमई से स्टार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें देखिए, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होती है सेमीकंडक्टर, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जो बाकी नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे ही अगर आप देखें तो इंडिया एक कंजम्पशन नेशन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में 60% से ज्यादा कंजम्पशन है, एंड प्रोडक्शन में अभी भी इंडिया काफी नेशन से पीछे चल रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम प्रोडक्शन लाइन को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें, प्रोडक्शन पे जितना हो सके निवेश करें, ताकि हमारे प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ सके। तो आज गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स यूज होते हैं या जो चिपसेट्स यूज होते हैं उस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, प्लस रेल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। आज भारत रेल इंपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि रेल एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस में आ गया है। भारत डिफेंस पे काफी खर्च कर रही है, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत कर रही है, हम अपने खुद के स्वदेशी फायर फाइटर्स बना रहे हैं, हम अपने खुद के स्वदेशी आर्म्स एंड एम्युनिशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं, गवर्नमेंट इसके बहुत फोकस कर रही है कि हम अपने भारत को चारों तरफा सेफ गार्ड कर सकें, डिफेंस के सेक्टर में चारों तरफा हम अपने प्रोडक्शन लाइन को अच्छा कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अगर किसी भी वाहतुक से अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बाय रेल, बाय रोड, बाय सी या बाय वाटर, हम तीनों ही तरफा से जल्द पहुंच सकें, डिलीवरी करवा सकें, सर्विस अच्छी कर सकें, इसके ऊपर फोकस है। तो हम प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, बट यस, काम अभी भी बहुत करना बाकी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बजट से सारा काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बजट एक छोटा सा माध्यम है, एक छोटा सा पावली है जो हमने स्टेप अहेड किया है। धीरे धीरे ऐसे हम कई सारे बजट लाके धीरे धीरे हम आने वाले 10 साल में हम अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत होता हुआ देखेंगे।
1: ऐसा कहते हैं कि सर्विस सेक्टर इज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ फास्ट करना है तो सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बजट ने सर्विस सेक्टर को क्या क्या दिया है?
0: देखिए, मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जो अभी प्रेजेंट अगर आप देखें कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, प्रेजेंट जो टूरिज्म सेक्टर है, अगर आप देखें हमारे विदेशी जो मेहमान भारत घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने, वो करीब करीब इस समय 1 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन आती है। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि इसको हम 10 करोड़ टूरिज्म पे कैसे पहुंचाएं। फॉरेन टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे नेशन में आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी फॉरेन करेंसी, उनकी फॉरेन इकोनॉमी हमारे कंट्री में जम करती है, इंजेक्ट होती है। और क्योंकि उनकी करेंसी जब हमारे कंट्री में इंजेक्ट होती है तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो हमारे कंट्री में आते हैं तो यहाँ के जो सर्विस है वो सुधार होते हैं, क्योंकि उसमें आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बढ़ावा देते हो, आप टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हो, आप अपने लोगों में एक सिविक सेंस जागृत करते हो कि किसी से किस तरह से आप बर्ताव करें। एक अगर कोई महिला अगर फॉरेनर आई है तो उससे आप किस तरह से बात करें, एक कोई टूरिस्ट आया है जो फॉरेनर है उससे किस लैंग्वेज में, तो आपका लैंग्वेज प्रोग्रेस होगा, आपका पहनावा प्रोग्रेस होता है, आपके कल्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में एक एग्जांपल है कि ये एक तरह से छोटा सा ग्रोथ सर्विस में है। तो ऐसे कई सारे सर्विस सेक्टर्स आप देखेंगे, हॉस्पिटलिटी सर्विस में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एजुकेशन सर्विसेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस बार के बजट में करीब 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखा है कि हम एजुकेशन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, और करीब करीब 1.5 लाख करोड़ पे रिसर्च और रिक्रूटमेंट और जो बाकी बच्चों से रिलेटेड उनके रिसर्च करना, उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना, उसके ऊपर काफी फोकस कर रही गवर्नमेंट। तो सर्विस में भी कहीं ना कहीं हमारा बढ़ावा हो रहा है।
1: अभी मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि सर्विस सेक्टर अगर ग्रो हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में अगर टॉप में अगर कोई है आज माना जाता है तो वो है हमारा आईटी सेक्टर एंड डिजिटल सेक्टर।
0: जी,
1: तो आईटी सेक्टर के लिए इस बजट ने क्या किया है?
0: जी, मैं अभी आपको इसके पहले जस्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपको ये प्रश्न का जवाब दिया था कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे जो आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या जितने भी आज के यंग जनरेशन सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, इन सबके जो डेटा सेंटर्स है ये इंडिया में नहीं है, दे आर ऑल इन फॉरेन। अब होता यह है कि अगर कल को किसी फॉरेन कंट्री के डेटा सेंटर ने या उस कंपनी ने कह दिया कि भाई कल से हम ये सर्विस के चार्जेस लेंगे, या कल से हम इसके टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, या कल से ये सर्विसेज जो फ्री सर्विसेज थे ये पेड सर्विसेज हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे बहुत सारी जनताओं को इफेक्ट हो जाएगा उसका, नंबर वन। नंबर टू, सर्विस सिक्योरिटी, सॉरी डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी कि भाई आपका जो डेटा है वो कितना सिक्योर्ड है। आज आप व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से अपने बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देते हो, आप व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल फोटोज डाल देते हो, क्या गारंटी है कि ये फोटोज, ये जो डेटा आपने फीड किया है ये सिक्योर्ड है? क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा जा रहे हैं ये डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अदर पार्टीज विच आर नॉट इन इंडिया, और उनके ऊपर लॉ कानून इंडियन का नहीं लगेगा, उनके ऊपर सारे लॉ कानून विदेशी कानून लगेंगे, और अगर विदेशी कानून में उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उनके लिए प्रोहिबिशंस नहीं है डेटा पे, तो वो तो मनमानी काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 years में हमारे इंडिया में डेटा हब हो, डेटा सेंटर हो, और ये सारे डेटा हम मैनेज करें जो हमारे इंडियंस के डेटा हो। तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है इससे रिलेटेड।
1: अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमई की बातें हमने की। मैं अभी आप लोगों आपको एक थोड़ा अलग एंगल से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो है रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट। तो पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट डू, क्योंकि हमारे श्रोते जो है वो एक आसान भाषा में जानने चाहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि इस टैक्स में बहुत बदलाव हुआ है ऐसा हमने देखा है। तो पहले तो बताइए कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और बाद में बताइए कि उसमें क्या चेंजेस हुए।
0: मैडम, आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और A1 प्रश्न किया है मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी लोग इससे नाराज है कि भाई गवर्नमेंट ने एसटीटी रेट बढ़ा दिया। एसटीटी का मतलब हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब क्या होता है एसटीटी, मैं थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफ कर दूं। देखिए, जब भी आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को किसी एक्सचेंज के थ्रू, हमारे भारत में 2 एक्सचेंज सेंटर्स है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये मिडलमैन बन जाते हैं हमारे लिए, जिनके थ्रू बायर एंड सेलर अपने सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हैं। अब जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को, तो यहां पे गवर्नमेंट एसटीटी का प्रोविजन लाती है। तो जो बायर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, और जो सेलर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, जो कि अब तक 0.05% था। अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा स्लाइट इंक्रीज किया है, 0.15% पे लाया है। अब आपका कहना होगा कि गवर्नमेंट ने ये 0.10% जो बढ़ाया है, इससे गवर्नमेंट को क्या ही आमदनी हो रही है और क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने? तो मैं इस पे एक आपको ये तरह से विश्लेषण दूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का मोटिव क्या है वो आप समझने के पक्ष में रहिएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि आज की जो जनरेशन है ना, आज की मैक्सिमम यंग क्राउड्स इजी मनी के पीछे दौड़ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स चलते हैं सोशल मीडिया पे, एड्स होते हैं यूट्यूब पे, एड्स आते हैं, इवन हमारे टीवी चैनल्स पे एड आते हैं, कई मैचेस के दौरान भी एड आते हैं कि भाई ट्रेडिंग करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे ट्रेडर बन जाइए, या फिर आप

0: फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करिए और लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए। अब जो हमारी यंग क्राउड है जिनके लिए संघर्ष करना एक बड़ा चैलेंज है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर मुझे महीने में 50,000 कमाना है, 1,00,000 कमाना है, तो मैं क्यों ना अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करूं और यहीं पे उसको चैनलाइज करके मैं इसी से पैसे कमा लूं। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से, बैंक से, रिश्तेदारों से, अपने घर के फैमिली मेंबर्स से पैसे लाकर इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि मैं इसमें कमाऊंगा, बिना प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी, बिना प्रॉपर एनालाइज किए वो पैसे को लगा देते हैं। और बाद में होता ऐसे है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके पैसे जिसमें उन्होंने निवेश किया है, ये सोचकर कि ये मुझे इंक्रीमेंट देंगे या मुझे फायदे देंगे, कई बार उनको उसमें नुकसान होता है। और जब नुकसान सहते हैं वो, तो उनको बहुत बड़ा फटका लगता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ इजी अर्निंग मनी वेयर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एसटीटी। तो ये एक तरह का मैं कहूंगा ये डिस्करेज करने का पॉइंट है गवर्नमेंट का यंग जनरेशन को, खास करके हमारे, ताकि यंग जनरेशन इजी मनी की तरफ ना भागें। आपको इसके पहले पता होगा, जो बजट के पहले आया था, कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाया है, उसके लिए भी बिल पास किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग्स आज इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें काफी लोग अपने पैसे निवेश करते हैं ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के चक्कर में और वो पैसे गवा बैठते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया। सेम रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट अब यहाँ पे एसटीटी के द्वारा लाने की कोशिश कर रही है। जी,
1: इसके आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा कहा जाता है जय जवान जय किसान।
0: जी,
1: तो ये हमारे बातें हमने की, और अगर किसानों के बारे में हमने बात नहीं की तो हमारा ये डिस्कशन।
0: जी, ये हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ये नारा था जय जवान जय किसान। जी बोलिए,
1: किसानों के लिए क्या किया है बजट में?
0: देखिये मैम, किसानों के लिए गवर्नमेंट तत्पर काम कर रही है, और किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए। आज भी भारत में आपने देखा होगा कई बार फसलें होती हैं, अच्छी फसलें हो जाती हैं, बट कई बार हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो अनसर्टन हो गई हैं, अभी कभी भी आप देखते हैं रेन आ जाता है, कभी भी अचानक से पता चलता है कि भाई ठंड का मौसम हो रहा है और बहुत भीषण गर्मी हो रही है, या गर्मी का मौसम चल रहा है और अचानक से बारिश आ जा रही है। तो ऐसे मौसम में जब हम अपने अनाजों को खेतों में काट कर रखते हैं, या खेतों में अभी वो अनाज पक रहे हैं और उसमें अगर वर्षा हो जाए, या किसी कारण से क्लाइमेट अनसर्टन हो जाए और चेंज हो जाए, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करके हमारे किसानों भाइयों के लिए हॉर्टिकल्चर बोलिए, फिश कल्चर बोलिए, या फिर फार्मिंग बोलिए, उसमें फोकस कर रही है, उसमें निवेश कर रही है गवर्नमेंट। प्लस करीब करीब इसमें, जहां तक मैंने बजट को इस बार का समझा है, कि करीब करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने इसमें निवेश किया है। प्लस इसपे काफी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है बाय वे ऑफ यूरिया, बाय वे ऑफ पेस्टिसाइड्स, बाय वे ऑफ वेरियस सीड्स, तो इसमें भी काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट पहुंचा रही है लोगों तक। और एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट अब मिडल मैन के हाथों में न रखकर डायरेक्ट कंज्यूमर टू सप्लायर को एसोसिएट करने की कोशिश में है, जहां पे जो सप्लायर है, जो फार्मर है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके अपने प्रोडक्ट को थ्रू ऑनलाइन बिजनेस आप कहिए, या डायरेक्ट अपने व्हीकल से वो मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, जिससे उसे उचित दाम मिले। आज भी आप देखते हैं कि जब सप्लाई चेन बढ़ती है अचानक से किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्राइस कम्स डाउन, और बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके उचित दाम नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा फोकस कर रही है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ रही है, फार्मिंग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर को ग्रोथ कैसे करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, बिना फर्टिलिटी को हम फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा निवेश किया है। और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये अच्छा बूम करेगा, ग्रो करेगा। जी,
1: अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस, बजट की एक नस पकड़ने वाली हूँ, और वो नस है फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि ये जो बजट पूरा हम लोग बनाते हैं, उसके पीछे हमारा एम ही है कि हाउ वी आर कंट्रोल अवर डेफिसिट, तो इस साल के बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है?
0: जी मैं आपको कह दूं कि 2022-23-24 में हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 6.5% के आसपास था, जिसको गवर्नमेंट इस बार मिनिमाइज करते करते 4.3% के आसपास ला रही है। अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत सी आम जनताओं को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो ये एक आम लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझें कि गवर्नमेंट का इस साल का जो खर्च है वो करीब 55 लाख करोड़ रुपए का है। पूरे साल का जो खर्च बजट बनाया है उन्होंने वो 55 लाख करोड़ का है, और उसके अपोजिट में जो इनकम आना है वो करीब करीब 44 से 44.5 मतलब 44 to 44.5 लाख करोड़ के आसपास इनकम है। तो आने का जो स्रोत है वो करीब 44.5 लाख करोड़ है, और जो आउटगोइंग का स्रोत है वो 55 लाख करोड़ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देर इज अज गैप, करीब करीब 10 लाख करोड़ का गैप है। अब ये गैप को फंड करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी या फिर बॉन्ड्स इश्यू करेगी, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करेगी, जहां से वो अपने इनकम को राइज करके अपने एक्सपेंस को कॉम्पनसेट करेगी। तो यहां पे गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हुए। तो जैसे जैसे रेवेन्यू को ग्रो करेंगे हम और एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर को हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है। देश को अभी भी आगे ले जाने के लिए हमें कई वर्ष और लगेंगे, कई वर्ष और हमें अपने पूरे मेहनत के साथ काम करने होंगे, तो वहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे बट साइमल्टेनियसली हमें इनकम को भी राइज करना है सो दैट हमारे फिस्कल डेफिसिट को हम स्लाइटली धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे ला सके। तो इस बार का हमारा जो डेफिसिट है फिस्कल वो करीब 4.3% के आसपास रहने वाला है। जी
1: अभी तो हमने सारे इस साल के बजट के बारे में हमने जानकारी ले ली, अभी हमारा नारा है विकसित भारत 2047।
0: जी
1: तो अभी हम लोग हमारे सेशन के कंक्लूजन पे आते हैं, तो अभी मुझे बताइए कि ये जो नारा है हमारा विकसित भारत 2047, ये जो हमारा विजन है वो किस तरह से, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इस साल के बजट?
0: जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से भी कहा और अभी भी मैं वापस रिपीट करूंगा उसी लाइन को कि गवर्नमेंट आने वाले 15 से 20 साल के भविष्य पे निवेश कर रही है, और इस बार का बजट अगर आप देखेंगे तो नेशन फर्स्ट, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने नेशन को फोकस किया है इंडिविजुअल को नहीं, तो नेशन फर्स्ट के नारे पे गवर्नमेंट काम कर रही है और उसी के प्रोविजन पे इस बार का बजट मैक्सिमम आप देखेंगे या आप कहेंगे कि भाई करीब करीब 90% से ज्यादा जो इस बार का बजट आया है वो 90% से ज्यादा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे कैपिटलाइज हैं। कैपिटलाइज मतलब वो लॉन्ग टर्म विजन पे जा रहे हैं और उनका जो असर है आने वाले 5 से 10 साल बाद 15 साल बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक अपना एम रखा है, लक्ष्य रखा है, या गवर्नमेंट ने एक जो भविष्यवाणी की कि बाय 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा और एक डेवलप्ड नेशन होगा, उसके लिए हमने इस साल एक कदम उठाया है। और मैं ये कहते हुए खुश भी होता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे कई बजट आएंगे जहां पे हमारे नेशन को हम प्रायोरिटी रख के नेशन के बारे में, क्योंकि अगर घर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित, और अगर घर में सुरक्षा नहीं है या घर हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कभी नहीं हो सकते। तो ये जो नारा है 2047 का, ये नारा तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा घर सुरक्षित होगा, और घर को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने नेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा चारों तरफ से, चाहे वो आईटी से हो, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो सर्विस से हो, चाहे वो लोगों की जीडीपी से हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम से हो, हर सेक्टर में हमें, हर सेक्टर में हम ऐसे फोकस ही नहीं कर सकते कि सिर्फ हम इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे उस सेक्टर को, हमने हमें हर सेक्टर को देखना होगा, हमें ट्रांसपोर्ट देखना होगा, हमें हॉस्पिटलिटी देखना होगा, हमें टूरिज्म देखना होगा, हर सेक्टर पे हम जब जाएंगे तब हम 2047 को अचीव करेंगे और हम डेवलप्ड नेशन बनकर निकलेंगे।
1: यस ये तो है, हम लोग विकसित भारत का हमारा ये जो नारा है ये तो हमारा पूरा होने ही वाला है
0: जी,
1: इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। पूरी तरह से हमें कॉन्फिडेंस है, तो ये तो होके ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द इनसाइट्स ऑफ यूनियन बजट। आपने बहुत ही आसान भाषा से हमारे श्रोते जो है, लिसनर जो है, उनको आपने समझाया बजट क्या है, इस साल के बजट ने हमको क्या दिया है और आगे जाके 47 में विकसित भारत हम लोग किस तरह से अचीव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई लिसनर्स टू लिसन अवर पॉडकास्ट। Keep listening Acharya 90FM, myself Manjusha Katigar, now taking your leave. Thank you so much.
0: Thank you very much mujhe invite karne ke liye Acharya 90FM aur

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोज बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदार, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भूला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरों बार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दूंगी ना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, चाहती हो? तुमने हमेशा अपना साथ दिया, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते हुए तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती हो? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखती है।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तान। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने, सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी, और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है।
आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ। अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना। अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे, हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे, हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, ग्रुप मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे। अशफाक पीछे रह गया, एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी। तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुना नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद

शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा, क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी, तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई, उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारे तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हिमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती, और इसी हद

सो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

0: Hello, Acharya listeners. Myself, Manjusha Katigar, Assistant Professor, Coordinator of BBI from NJ Acharya and DK Marathi College, welcome on Acharya 90 FM on our special program of Union Budget 2026-27. Today we have an expert resource person with us from Acharya College only. He is a CA and Assistant Professor. Professor Mahesh Vaishya giving us a briefing about our budget, and he tells us how the Indian economy budget, how our budget is affecting our Indian economy, business and common person. So sir, tell me first of all, in simple language, what do you mean by budget?
1: Let me before start, I just want to ask a question. Madam, should we continue in English or it's okay if we go in Hindi? As well as English.
0: No, we can use both the language.
1: Okay, thank you.
0: Combination of
1: okay, जो हमारे श्रोता है, listeners है, मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही simplified way में हमारे budget को understand करें. And before going ahead with the budget, I just want to tell you कि budget आज के हमारे जो generations हैं, young generations हैं, वो budget को इतना serious consider नहीं करते हैं. वो सोचते जैसे बाकी भाषण होते हैं parliament house में. एंड बाकी जैसे सरकार अपनी काम करती है, वैसे एक बजट का भी एक होता है सिनेरियो. तो मैं सभी अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बजट को उस नजरिए से ना देखें आप. बजट एक अलग पहलू है. जैसे हमारे घर में हमारे गार्जियंस, माता पिता, फैमिली अर्नर्स जो होते हैं, वो हर महीने का एक इनकम लाते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे घर के जो दूसरे गार्जियंस होते हैं वो उसका एक एक्सपेंस का रेशियो बनाते हैं कि इस महीने में हमको मेडिकल का ये खर्चा है, इस महीने में हमें टूर के लिए यहां जाना है तो उससे ये रिलेटेड खर्चे हैं, इस महीने में हमें बच्चों का फीस भरना है उससे ये खर्चे हैं. तो हम एक अपना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि भाई हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं. जब भी किसी व्यक्ति के आमदनी से ज्यादा खर्च होंगे तो यहाँ पे एक बात खुलकर आती है कि आपको कहीं ना कहीं से वो एडिशनल इनकम को जनरेट करना होगा या फिर किसी से वो एडिशनल इनकम लेना होगा मांगकर. तो आप या तो बैंक के पास जाएंगे या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे या किसी करीबी के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप मदद करिए. और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आप वहां सरप्लस होंगे, और जब आप सरप्लस में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को किसी और अच्छी जगहों पर निवेश करेंगे. लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लोग गहने बनवाते हैं, या लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, या लोग भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे हम अपने घर में एक सिनेरियो रूपांतर करते हैं कि हमारा इनकम का फ्लो क्या है और एक्सपेंस का फ्लो क्या है, सेम वही फ्लो को हम एक अपने पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे नेशन के लिए हम जब बनाते हैं तो उसको हम एक बजट का रूपांतर देते हैं. तो ये बेसिक ओवरऑल जनरल सिनेरियो है बजटिंग का.
0: एज अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल का जो बजट हमारा है 26-27 का, उसका मेन तत्वज्ञ, उसके पीछे मेन तत्वज्ञान क्या है? जो बजट बना है उसके पीछे क्या मेन एम है?
1: आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैम. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा इसके बारे में कि देखिए, आज के जो जनरेशन है या अभी के जो सिनेरियो चल रही है, तो लोगों का ये सोच है कि भाई पब्लिक को क्या मिल रहा है बजट से, पब्लिक को आमदनी क्या हो रही है, पब्लिक को क्या इनकम्स आ रहे हैं, या बजट से क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है. तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप उस सिनेरियो में ना देखें. बजट बेसिकली एक रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस से होता है. तो जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली सरकार ये देखती है कि आपके खर्चे जो मंथली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, वो इनकम इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो, वो रेवेन्यू बेसिस होगा. बट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम करें तो सरकार लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है, जहां पे 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स डाउन द लाइन, यहां से हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक भविष्य निवेश की तरफ चलते हैं. तो दोनों ही सेक्टर को पैरेलली गवर्नमेंट लेकर चलती है. अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पिछले साल का जो बजट आया था वो काफी इंटरेस्टिंग बजट था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में काफी बड़ा स्लैब रेट में राहत दिया लोगों को, 12 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी पिछले ही साल 2025 सितंबर मंथ में गवर्नमेंट ने जीएसटी में काफी रेट्स कट डाउन किए, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेक्टर में ऑलरेडी काम कर दिया है। तो रेवेन्यू में उन्होंने इनकम के ऊपर भी आपका जोर दे दिया कि भाई आपके इनकम को हमने बढ़ा दिया, तो अब आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई मैं 5 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा, मैं 8 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा। तो अब आपको 12 लाख तक की लिमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो आपको वहां पे एक चिंता खत्म हो गई। मेजोरिटी हमारी जो 60 से 65% जनता है जिसकी आमदनी 10 से 12 लाख के बीच में है या बिलो है, उन सभी जनताओं के लिए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। प्लस बाकी हमारी जो बचे हुए लोग थे, या मैं कहूं 100% लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ में जो जीएसटी के रेट्स कट डाउन किए, इससे कंजम्पशन में काफी ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब रेट कम हुए हैं तो प्राइजेस नीचे आए हैं, कीमतें कम हुई हैं, कंजम्पशन बढ़ा है, तो रेवेन्यू पे ऑलरेडी सरकार ने फोकस किया था। इस बार का बजट पे सरकार की ये एम है कि कैपिटल पे फोकस किया जाए, और इसलिए आप देखेंगे इस बार का बजट नेशन पे किया गया है, ना कि लोगों पर। तो ये नेशन जो बजट है, ये नेशन बजट ऐसा है कि हमने यहां से 10 से 15 20 साल का निवेश का स्तर रखा है, जहां पे हम बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इंफ्रा कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं, डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम काफी बड़े पैमाने में बड़े विजन के साथ हम ग्लोबलाइजेशन पे उतर रहे हैं कि हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर नेशन के रूप में अगले 15 से 20 साल में हम आ सके, उस तरह से हमारा फोकस है।
0: आपने अभी अभी कहा, उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि इस साल का बजट जो है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर द नेशन। तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अगर नेशन का बजट है, तो हमारा आज का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें 4-5 सालों से, कि इंडिया इज अचीविंग द एक्सीलेंट ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो राइजिंग पाथ पे दिख रहा है। आई एम द इकोनॉमिक्स टीचर, सो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट अगर राइजिंग पाथ पे चल रहा है, तो उसको सस्टेन करने के लिए बजट ने क्या किया?
1: जी, उसे सस्टेन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा। आज अगर हम सोचेंगे कि हम इस साल के इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोगों को खुश कर दें कि भाई चलो इस साल और हमने आपकी आमदनी बढ़ा दी, इस साल और हमने आपको पैसे हाथ में दे दिए खर्च करने के लिए, रेट और कम कर दिए, तो इससे होगा क्या कि आप थोड़ा उस बात पे चलेंगे कि बस आपको कमाना है, खाना है और खर्च कर देना है, बजाय कि हम ये चाहते हैं कि सस्टेन हो। सस्टेन का मतलब हुआ कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें एक आगे विजन लेकर चलना है, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी एक विजन है कि हमको बाय 2047 हमारे भारत को एक विकसित और डेवलप्ड नेशन के नाम से हमारा भारत जाना जाए, जो कि अभी भी हम उस मार्ग पे हैं कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चल रहे हैं, और काफी सालों से हमारा एक विजन है कि हम कब डेवलप होंगे। हमारा जो जनरेशन है, हमने पढ़ाई के दौरान भी यही पढ़ा कि हम लोग डेवलपिंग नेशन है, और आज भी हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी हम यही पढ़ रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है। तो कब वो सपना हमारा साकार होगा कि हम भी एक डेवलप नेशन बने, तो उसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी है, उससे रिलेटेड इस बार के बजट में काफी कुछ सरकार ने किया है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर देता जाऊंगा।
0: ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहे हैं हमारा बजट जो है, ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहा है, ऐसा
1: बाकी अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके ग्रोथ कंपैरेटिवली उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, कहीं तो नेगेटिव में भी हैं, कहीं पे ग्रोथ है बट बहुत बहुत माइन्यूट ग्रोथ है, बट इंडिया इज यस कंपैरेटिवली ग्रोइंग वेरी वेल, एंड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड अवर इंडिया इज डूइंग परफॉर्मिंग वेरी वेल।
0: तो ग्रोथ रेट तो सस्टेन हो रहा है, ऐसे आप बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट सस्टेन करने के लिए बजट ने इस बार बहुत कुछ किया हुआ है। तो ग्रोथ रेट की बात अगर आती है, तो युवा वहां पे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: जी बिल्कुल,
0: बिकॉज ग्रोथ रेट युवाओं के ही कंधे पे चल रहा
1: जी,
0: है
1: जी, आज के भविष्य
0: तो,
1: है वो।
0: हाँ, तो मुझे जानना है इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया है।
1: देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप युवाओं के सेक्टर के लिए बात करें, तो आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या एक उनके सामने प्रश्न है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का क्या है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज गवर्नमेंट काफी बड़ा निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग विथ साउथ साइड में, दे आर स्टार्टिंग विथ कॉरिडोर, जहां पे वो मिनरल्स जो हमारे ऐसे मिनरल्स है जो अभी तक इंडिया ने प्रॉपर एक्सप्लोर तो किया है बट प्रॉपर अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। हमारे पास मिनरल्स हैं काफी मात्रा में है बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको जनधन तक पहुंचा नहीं पा रहे, जिसके कारण से वो मिनरल्स हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाकी नेशंस यूज कर रहे हैं, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट इस बार कॉरिडोर पे फोकस करके उन रिसोर्सेज का यूज करेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट एक बढ़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे काम कर रही है, इंफ्रा पे काम कर रही है, जहां पे और भी विस्तार रूप से रोड्स हैं, रेल लाइन्स हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा डेटा सेंटर्स रिलेटेड गवर्नमेंट इस बार प्लान की है कि हमें, जैसे आज हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या और भी बहुत सारे जो एप्स यूज करते हैं, ये सारे एप्स के जो डेटा सेंटर है दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड इंडिया। और उस वजह से हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि अगर कल को ये कंपनीज किसी कारण से, जैसे कि आपने अभी सुना होगा बीच में कि अमेरिका ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया, किसी और कंट्री ने कुछ और कर दिया, तो हमारे ग्रोथ पे उसका असर आ जाता है। तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपने यहां पे डेटा सेंटर्स कंपनीज ओपन करें और जो डेटा आज बाहर मैनेज किए जा रहे, बाहर के सर्वर में रखे जा रहे, बाहर गांव के सर्वर में वो स्टोर किए जा रहे, वो सारा स्टोरेज हमारे इंडिया में, तो वहां पे आपका जॉब बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्शंस गवर्नमेंट इंडिया स्टार्ट कर रही है, तो प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है। ये सारे सेक्टर्स जो बढ़ेंगे इसमें आने वाले भविष्य में आप पकड़ के चलिए कि यहां से करीब करीब 20 से 25 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट हो रहे हैं।
0: ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट ने ये दिया है ग्रोथ के, यूथ के ग्रोथ के लिए। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस, रिफॉर्म, जिसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रिफॉर्म कहते हैं,
1: जी जी जी,
0: कि कुछ ना कुछ हमेशा गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है, तो इस बार कितने रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इस बजट में लॉन्च किए हुए हैं और क्या है वो?
1: देखिए, जो मौजूदा सरकार है अगर आप देखें या इसके पिछले की भी जितनी सरकारें गई हैं, अगर आप इनका टोटल समावेश करें, टोटल एग्रीगेट करें, तो करीब करीब 350 के आसपास हमने रिफॉर्म्स किए हैं अब तक। और ये कई सारे रिफॉर्म्स है, आप इसमें बैंकिंग रिफॉर्म करिए, आप इसमें टैक्सेशन में रिफॉर्म लीजिए, आप इसमें रेवेन्यू रिफॉर्म करिए, हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जिनको हमने एबॉलिश किया या उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया हमने, लोगों के लिए जीएसटी में जो सिंप्लीफिकेशन लाए हैं या हमने इनकम टैक्स में जो कलेक्शंस किए, ये सारे रिफॉर्म्स हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और ये रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, समय की मांग है। जब लॉ लिखा गया था उस समय जो दौर था वो दौर और आज के दौर में बहुत कलेक्शंस हैं। अगर आज भी आप कहेंगे कि भाई आप पेपर एंड पेन से लेकर कोई हिसाब किताब करें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज, बट एक दौर था कि जब पेपर पेन से ही लोग हिसाब किताब करते थे और जर्नल बुक्स लिखते थे, बट आज तो हर चीज के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि चलिए मैं एक छोटे से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूं, नहीं, क्योंकि आज मल्टीनेशनल सेक्टर में रियल टाइम पे आपको डेटा एंट्री होना है, रियल टाइम पे सारा काम, तो हर चीज के लिए रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब तक रिफॉर्म नहीं होगा हम चेंजेस नहीं देख पाएंगे और चेंजेस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है जी।
0: अभी मैं एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये भी देश के विकास के हिसाब से ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के साथ साथ आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एमएसएमई के लिए, क्योंकि इस मतलब रिसेंटली एमएसएमई का भी नाम बहुत आ रहा है कि हमें अगर ग्रोथ करना है तो वी हैव टू बुश अवर एमएसएमई, और गवर्नमेंट हर बजट में एमएसएमई को कुछ ना कुछ तो दे रही है, तो जी, आप थोड़ा फोकस कर
1: एमएसएमई से। मैं आपको बताऊंगा एमएसएमई से स्टार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें देखिए, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होती है सेमीकंडक्टर, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जो बाकी नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे ही अगर आप देखें तो इंडिया एक कंजम्पशन नेशन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में 60% से ज्यादा कंजम्पशंस है एंड प्रोडक्शन में अभी भी इंडिया काफी नेशन से पीछे चल रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम प्रोडक्शन लाइन को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें, प्रोडक्शन पे जितना हो सके निवेश करें ताकि हमारे प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ सके। तो आज गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स यूज होते हैं या जो चिपसेट्स यूज होते हैं उस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, प्लस रेल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। आज भारत रेल इम्पोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि रेल एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस में आ गया है। भारत डिफेंस पे काफी खर्च कर रही है, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत कर रही है। हम अपने खुद के स्वदेशी फायर फाइटर्स बना रहे हैं, हम अपने खुद के स्वदेशी आर्म्स एंड एम्युनिशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है कि हम अपने भारत को चारों तरफा सेफ गार्ड कर सकें, डिफेंस के सेक्टर में चारों तरफा हम अपने प्रोडक्शन लाइन को अच्छा कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अगर किसी भी वाहतुक से अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बाय रेल, बाय रोड, बाय सी या बाय वाटर हम तीनों ही तरफा से जल्द पहुंच सकें, डिलीवरी करवा सकें, सर्विस अच्छी कर सकें, इसके ऊपर फोकस है। तो हम प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, बट यस काम अभी भी बहुत करना बाकी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बजट से सारा काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बजट एक छोटा सा माध्यम है, एक छोटा सा पावली है जो हमने स्टेप अहेड किया है। धीरे धीरे ऐसे हम कई सारे बजट लाके धीरे धीरे हम आने वाले 10 साल में हम अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत होता हुआ देखेंगे।
0: ऐसा कहते हैं कि सर्विस सेक्टर इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ फास्ट करना है तो सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बजट ने सर्विस सेक्टर को क्या क्या दिया है?
1: देखिए मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो अभी प्रेजेंट अगर आप देखें कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, प्रेजेंट जो टूरिज्म सेक्टर है अगर आप देखें, हमारे विदेशी जो मेहमान भारत घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने, वो करीब करीब इस समय 1 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन आती है। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि इसको हम 10 करोड़ टूरिज्म पे कैसे पहुंचाएं। फॉरेन टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे नेशन में आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी फॉरेन करेंसी, उनकी फॉरेन इकोनॉमी हमारी कंट्री में जम करती है, इंजेक्ट होती है। और क्योंकि उनकी करेंसी जब हमारी कंट्री में इंजेक्ट होती है तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो हमारी कंट्री में आते हैं तो यहाँ के जो सर्विस हैं वो सुधार होते हैं, क्योंकि उसमें आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बढ़ावा देते हो, आप टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हो, आप अपने लोगों में एक सिविक सेंस जागरूक करते हो कि किसी से किस तरह से आप बर्ताव करें। एक अगर कोई महिला अगर फॉरेनर आई है तो उससे आप किस तरह से बात करें, एक कोई टूरिस्ट आया है जो फॉरेनर है उससे किस लैंग्वेज में, तो आपका लैंग्वेज प्रोग्रेस होगा, आपका पहनावा प्रोग्रेस होता है, आपके कल्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में एक एग्जांपल है कि ये एक तरह से छोटा सा ग्रोथ सर्विस में है। तो ऐसे कई सारे सर्विस सेक्टर्स आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विस में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एजुकेशन सर्विसेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस बार के बजट में करीब 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखा है कि हम एजुकेशन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, और करीब करीब 1.5 लाख करोड़ पे रिसर्च और रिक्रूटमेंट और जो बाकी बच्चों से रिलेटेड उनके रिसर्च करना, उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना, उसके ऊपर काफी फोकस कर रही गवर्नमेंट। तो सर्विस में भी कहीं ना कहीं हमारा बढ़ावा हो रहा है।
0: अभी मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि सर्विस सेक्टर अगर ग्रो हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में अगर टॉप में अगर कोई है आज माना जाता है तो वो है हमारा आईटी सेक्टर एंड डिजिटल सेक्टर।
1: जी,
0: तो आईटी सेक्टर के लिए इस बजट ने क्या किया है?
1: जी, मैं अभी आपको इसके पहले जस्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपको ये प्रश्न का जवाब दिया था कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे जो आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या जितने भी आज के यंग जनरेशन सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, इन सबके जो डेटा सेंटर्स है ये इंडिया में नहीं है। दे आर ऑल इन फॉरेन. अब होता यह है कि अगर कल को किसी फॉरेन कंट्री के डेटा सेंटर ने या उस कंपनी ने कह दिया कि भाई कल से हम ये सर्विस के चार्जेस लेंगे, या कल से हम इसके टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, या कल से ये सर्विसेज जो फ्री सर्विसेज थे ये पेड सर्विसेज हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे बहुत सारी जनताओं को इफेक्ट हो जाएगा उसका, नंबर वन. नंबर टू, सर्विस सिक्योरिटी, सॉरी डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी कि भाई आपका जो डेटा है वो कितना सिक्योर्ड है. आज आप व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से अपने बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देते हो, आप व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल फोटोज डाल देते हो, क्या गारंटी है कि ये फोटोज, ये जो डेटा आपने फीड किया है ये सिक्योर्ड है? क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा जा रहे हैं ये डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है. दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अदर पार्टीज विच आर नॉट इन इंडिया, और उनके ऊपर लॉ कानून इंडियन का नहीं लगेगा. उनके ऊपर सारे लॉ कानून विदेशी कानून लगेंगे, और अगर विदेशी कानून में उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उनके लिए प्रोहिबिशंस नहीं है डेटा पे, तो वो तो मनमानी काम कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आने वाले नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमारे इंडिया में डेटा हब हो, डेटा सेंटर हो, और ये सारे डेटा हम मैनेज करें जो हमारे इंडियंस के डेटा हो. तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है इससे रिलेटेड.
0: अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमई की बातें हमने की. मैं अभी आप लोगों आपको एक थोड़ा अलग एंगल से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो है रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट. तो पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट डू, क्योंकि हमारे श्रोते जो है वो एक आसान भाषा में जानने चाहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि इस टैक्स में बहुत बदलाव हुआ है ऐसा हमने देखा है. तो पहले तो बताइए कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और बाद में बताइए कि उसमें क्या चेंजेस हुए.
1: मैडम आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और A1 प्रश्न किया है मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी लोग इससे नाराज है कि भाई गवर्नमेंट ने एसटीटी रेट बढ़ा दिया. एसटीटी का मतलब हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. अब क्या होता है एसटीटी, मैं थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफ कर दूं. देखिए जब भी आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को किसी एक्सचेंज के थ्रू, हमारे भारत में दो एक्सचेंज सेंटर्स है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE. दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये मिडलमैन बन जाते हैं हमारे लिए, जिनके थ्रू बायर एंड सेलर अपने सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हैं. अब जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को, तो यहां पे गवर्नमेंट एसटीटी का प्रोविजन लाती है. तो जो बायर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, और जो सेलर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, जो कि अब तक 0.05% था. अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा स्लाइट इंक्रीज किया है, 0.15% पे लाया है. अब आपका कहना होगा कि गवर्नमेंट ने ये 0.10% जो बढ़ाया है इससे गवर्नमेंट को क्या ही आमदनी हो रही है, और क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने? तो मैं इस पे एक आपको ये तरह से विश्लेषण दूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का मोटिव क्या है वो आप समझने के पक्ष में रहिएगा. गवर्नमेंट चाहती है कि आज की जो जनरेशन है ना, आज की मैक्सिमम यंग क्राउड्स इजी मनी के पीछे दौड़ रही है. आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स चलते हैं सोशल मीडिया पे, एड्स होते हैं यूट्यूब पे, एड्स आते हैं, इवन हमारे टीवी चैनल्स पे एड आते हैं, कई मैचेस के दौरान भी एड आते हैं कि भाई ट्रेडिंग करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे ट्रेडर बन जाइए, या फिर आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करिए और लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए. अब जो हमारी यंग क्राउड है जिनके लिए संघर्ष करना एक बड़ा चैलेंज है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर मुझे महीने में 50,000 कमाना है, 1,00,000 कमाना है, तो मैं क्यों ना अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करूं और यहीं पे उसको चैनलाइज करके मैं इसी से पैसे कमा लूं. अब जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से, बैंक से, रिश्तेदारों से, अपने घर के फैमिली मेंबर्स से पैसे लाकर इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि मैं इसमें कमाऊंगा, बिना प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी, बिना प्रॉपर एनालाइज किए, वो पैसे को लगा देते हैं और बाद में होता ऐसे है कि बड़े बड़े कंपनियों में उनके पैसे जिसमें उन्होंने निवेश किया है ये सोचकर कि ये मुझे इंक्रीमेंट देंगे या मुझे फायदे देंगे, कई बार उनको उसमें नुकसान होता है और जब नुकसान सहते हैं वो तो उनको बहुत बड़ा फटका लगता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ इजी अर्निंग मनी वेयर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एसटीटी। तो ये एक तरह का मैं कहूंगा ये डिस्करेज करने का पॉइंट है गवर्नमेंट का यंग जनरेशन को, खास करके हमारे, ताकि यंग जनरेशन इजी मनी की तरफ ना भागें। आपको इसके पहले पता होगा जो बजट के पहले आया था कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाया है, उसके लिए भी बिल पास किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग्स आज इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं जिसमें काफी लोग अपने पैसे निवेश करते हैं ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के चक्कर में और वो पैसे गवा बैठते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया। सेम रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट अब यहाँ पे एसटीटी के द्वारा लाने की कोशिश कर रही है। जी,
0: इसके आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा कहा जाता है जय जवान जय किसान।
1: जी,
0: तो ये हमारे बातें हमने की और अगर किसानों के बारे में हमने बात नहीं की तो हमारा ये डिस्कशन।
1: जी, ये हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ये नारा था जय जवान जय किसान। जी बोलिए,
0: किसानों के लिए क्या किया है बजट में?
1: देखिए मैम, किसानों के लिए गवर्नमेंट तत्पर काम कर रही है और किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए। आज भी भारत में आपने देखा होगा कई बार फसलें होती हैं, अच्छी फसलें हो जाती हैं, बट कई बार हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो अनसर्टन हो गई हैं, अभी कभी भी आप देखते हैं रेन आ जाता है, कभी भी अचानक से पता चलता है कि भाई ठंड का मौसम हो रहा है और बहुत भीषण गर्मी हो रही है, या गर्मी का मौसम चल रहा है और अचानक से बारिश आ जा रही है। तो ऐसे मौसम में जब हम अपने अनाजों को खेतों में काट कर रखते हैं या खेतों में अभी वो अनाज पक रहे हैं और उसमें अगर वर्षा हो जाए या किसी कारण से क्लाइमेट अनसर्टन हो जाए और चेंज हो जाए, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करके हमारे किसानों भाइयों के लिए हॉर्टिकल्चर बोलिए, फिश कल्चर बोलिए, या फिर फार्मिंग बोलिए, उसमें फोकस कर रही है, उसमें निवेश कर रही है गवर्नमेंट। प्लस करीब करीब इसमें, जहां तक मैंने बजट को इस बार का समझा है, कि करीब करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने इसमें निवेश किया है। प्लस इसमें काफी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है बाय वे ऑफ यूरिया, बाय वे ऑफ पेस्टिसाइड्स, बाय वे ऑफ वेरियस सीड्स, तो इसमें भी काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट पहुंचा रही है लोगों तक। और एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट अब मिडल मैन के हाथों में न रखकर डायरेक्ट कंज्यूमर टू सप्लायर को एसोसिएट करने की कोशिश में है, जहां पे जो सप्लायर है, जो फार्मर है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके अपने प्रोडक्ट को थ्रू ऑनलाइन बिजनेस आप कहिए, या डायरेक्ट अपने व्हीकल से वो मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके जिससे उसे उचित दाम मिले। आज भी आप देखते हैं कि जब सप्लाई चेन बढ़ती है अचानक से किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्राइस कम्स डाउन और बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके उचित दाम नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा फोकस कर रही है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ रही है, फार्मिंग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर को ग्रोथ कैसे करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, बिना फर्टिलिटी को हम फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा निवेश किया है। और जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर ये अच्छा बूम करेगा, ग्रो करेगा। जी,
0: अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस बजट की एक नस पकड़ने वाली हूँ और वो नस है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ये जो बजट पूरा हम लोग बनाते हैं उसके पीछे हमारा एम ही है कि हाउ वी आर कंट्रोल अवर डेफिसिट। तो इस साल के बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है?
1: जी मैं आपको कह दूं कि 2022-23-24 में हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 6.5% के आसपास था, जिसको गवर्नमेंट इस बार मिनिमाइज करते करते 4.3% के आसपास ला रही है। अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत सी आम जनताओं को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो ये एक आम लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझें कि गवर्नमेंट का इस साल का जो खर्च है वो करीब 55 लाख करोड़ रुपए का है। पूरे साल का जो खर्च बजट बनाया है उन्होंने वो 55 लाख करोड़ का है, और उसके अपोजिट में जो इनकम आना है वो करीब करीब 44 से 44.5 लाख करोड़ के आसपास इनकम है, तो आने का जो स्रोत है वो करीब 44.5 लाख करोड़ है और जो आउटगोइंग का स्रोत है वो 55 लाख करोड़ है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज गैप, करीब करीब 10 लाख करोड़ का गैप है। अब ये गैप को फंड करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी या फिर बॉन्ड्स इश्यू करेगी, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करेगी, जहां से वो अपने इनकम को राइज करके अपने एक्सपेंस को कॉम्पनसेट करेगी। तो यहां पे गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हुए। तो जैसे जैसे रेवेन्यू को ग्रो करेंगे हम और एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर को हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है, देश को अभी भी आगे ले जाने के लिए हमें कई वर्ष और लगेंगे, कई वर्ष और हमें अपने पूरे मेहनत के साथ काम करने होंगे, तो वहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे बट साइमल्टेनियसली हमें इनकम को भी राइज करना है सो दैट हमारे फिस्कल डेफिसिट को हम

0: निवेश कर रही है। और इस बार का बजट अगर आप देखेंगे तो नेशन फर्स्ट, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने नेशन को फोकस किया है, इंडिविजुअल को नहीं। तो नेशन फर्स्ट के नारे पे गवर्नमेंट काम कर रही है और उसी के प्रोविजन पे इस बार का बजट मैक्सिमम आप देखेंगे या आप कहेंगे कि भाई करीब करीब 90% से ज्यादा जो इस बार का बजट आया है वो 90% से ज्यादा जितने भी एक्सपेंस है वो सारे कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज मतलब वो लॉन्ग टर्म विजन पे जा रहे हैं और उनका जो असर है आने वाले 5 से 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक अपना एम रखा है, लक्ष्य रखा है, या गवर्नमेंट ने एक जो भविष्यवाणी की कि बाय 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा और एक डेवलप्ड नेशन होगा, उसके लिए हमने इस साल एक कदम उठाया है। और मैं ये कहते हुए खुश भी होता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे कई बजट आएंगे जहां पे हमारे नेशन को हम प्रायोरिटी रख के, नेशन के बारे में, क्योंकि अगर घर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित, और अगर घर में सुरक्षा नहीं है या घर हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कभी नहीं हो सकते। तो ये जो नारा है 2047 का, ये नारा तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा घर सुरक्षित होगा। और घर को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने नेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा चारों तरफ से, चाहे वो आईटी से हो, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो सर्विस से हो, चाहे वो लोगों की जीडीपी से हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम से हो, हर सेक्टर में हमें, हर सेक्टर में हम ऐसे फोकस ही नहीं कर सकते कि सिर्फ हम इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे, उस सेक्टर को हमने, हमें हर सेक्टर को देखना होगा, हमें ट्रांसपोर्ट देखना होगा, हमें हॉस्पिटलिटी देखना होगा, हमें टूरिज्म देखना होगा, हर सेक्टर पे हम जब जाएंगे तब हम 2047 को अचीव करेंगे और हम डेवलप्ड नेशन बनकर निकलेंगे।
1: यस सर, ये तो है, हम लोग विकसित भारत का हमारा ये जो नारा है ये तो हमारा पूरा होने ही वाला है
0: जी।
1: इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से हमें कॉन्फिडेंस है, तो ये तो होके ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द इनसाइट्स ऑफ यूनियन बजट। आपने बहुत ही आसान भाषा से हमारे श्रोते जो है, लिसनर जो है, उनको आपने समझाया कि बजट क्या है, इस साल के बजट ने हमको क्या दिया है और आगे जाके 47 में विकसित भारत हम लोग किस तरह से अचीव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई लिसनर्स टू लिसन अवर पॉडकास्ट। Keep listening, Acharya 90FM, myself, Manjusha Katigar, now taking your leave. Thank you so much.
0: Thank you very much, mujhe invite karne ke liye Acharya 90FM.

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: फाइव मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती हो। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.